0: आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्थित एटी इवेंट तथा पार्टी प्यालेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म। संपर्क नंबर 98576301।
1: यो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
2: अहिले बिहानको ठीक 6 बज्यो।

0: Hello, Jazalpa, Jazalpa, Jazalpa, Thile, Jazo, Neva, the Bunintal, Sandima, Chita, Dunuanisne, Hananaba, Luskus, Ibadan, Aletona, Pasa, Pimjinaba, Jazola, which not where Jazon, Nyaza, Dima, Chigo, Una, the Progatia, Kamneyase, Susaste, Biosaina, Kamneyase, Jirajan, Dongul, Vajanoka, Jazoka, Shikalaka, Bishesna, Jisa, Sangito, Strasta, Lixasna, Nansungo, Jazo, Kanadafu, Alet, Jazone, Titi, Strasta, Me, Ninkiku, Ate, जिस अनबक कथा नहीं आओगे गो अलेस समसमय कहाँ दुन्ना चूड़ा क्या नहीं आजुना कहाँ तो जस्ट तो आ संगीत स्वाग क्या उपरा नहीं आजुना अलेस समसम कहना कनी गुजी मतना भावन जागो था ना थी मेदो अलेस मतीना चुका तो कहाँ दुन्ना ची केंद्र जी गुजी आई तो जिन सिकुंता यंग की तेरा थोंगने या मैं देख बिले डायलॉग्स तो या मैं है आलेगो था जो गुना चलन तो बोला ना बच्चों तो क्या ना तो जो डायलॉग दो वो ने जी तो ना सोचा कथा अते स्वाभिया स्वस्थ है मशी का बिजान दिमाग खेले जो मदन कृष्ण श्रेष्ठ अते लेच नामी दो नगिन रहा आई तो जी तो मैं प्लस उस कथा नियने अले थोड़ा का जी मतिना सुखा तो खान दिना जी कुंदा केंद्र दिया कुछ जी रेडियो था संसार 99.4 मेगाहर्ट्ज़ ने जान दिख दो थोड़ी ले आज जी यंग दिना तो मैं पके
1: क्या वा लुई मुखो क्या वा
2: मल्टी उदो जी जी सम खान सना तस कब बाला
1: खान सब माला ये का उस ये जो ने
2: वे ये क्यों मसाला संधा उच्च ने उन्हें गेना ये क्यों दिया गेना ये क्यों
1: मैं आला ये कुसाना ये जो ने
2: वे मैं लाल मुसारे जी जिला पहान लुई सा बादान था सा मिसराल मुसारे जी
1: मैं जी आले बीला
2: हाँ
1: जी आले जीवला
2: तारे छंस में आला नहीं ला
1: सो
2: ऐसा छंस को मैं आला दागुआली लेका
1: का
2: इसको बुद्धि लड़ा लेका
1: का जी मैं हरे पाजन हाले पाजो गया
2: का जी जी मैं

हजुर नेपिसँग मैं नेनाइदेला खेले जुजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ छ तुगले चिक्सन याजादीको रेडियो स्टेशन का रेडियो थाहा संसार 99.4 मेगाहर्ज नेबको न्यानचंग ज्याजोन थन थ्या छ जे पनि त नेवादबु नेवादबु सर जी राजेन्द्र डंगोर वैसे नेबले थे शनिबार आइतबार निज वे खा थौ जी संगीत सभा गयो खन न्याज लगत मते मतिनाया थ खन जी छिन दुस गकन दिना मतिना धरे जुग ख कि छु दिया नेबस जी सक्ने छगु इले थन मतिना त के अभी मोरो दैबि जाय सायद दै नेमिस त जीवन नै छक मतिना या माया हजुर मतिना या माया प्रेम या खौ खौई गुबले थ भावना तो भाव दिमागे वही चीज तो विश्वास कथा मतिना जुगु तटे ख कि निनु पेनिया नेपुत कथा आकर्षण जुगु ख हजुर थजगु नेसन लुया वही सायद थटे नेस मुलुपी न मजगे दै तटे गुब्ले मुनु त मतिना त किने उब्ले उया थिथि मगर सपना सपना थ यम नप कालबिले चाहिँ छु थोय खल माया प्रेम मतिना छु चीज थजगु दु थयोगु दु थो चीज गुकिया त प्रेम या आधार थाई यदि छि यानुगु मदिना ताटे सत्य खदै खसा छु इले थजगु थिदि खन महसुस जुगु जिमा यदि महसुस यानुगु मर्सा तबि आन थौना समय इ ल्यादनी मदिना गु उमेरे जुइ सुना पर थो चीज त्याफै मकु अथे जस्तो छि ले याकच ने सुना सुना दिगु दुसा वइले दिमागे छम मनुजक दिमागे चाइला चन्दासा अन मथो अन मनोला एक दै तर वेजक लुमना वेजन दासा चिसा मतिना त गेउन तका त्याफु यदि छि थै त यगु मे निम्ले न उया ख्वा लुया वे याद वे लुमका दि मे शब्द खगो न छिगु नुगय ख सिक चो थे अले चोमी भजिया मे चोमी भजिया मे जो चुया दिगु त्याक चोमी भजिया मे जो चुया दिगु त्याक दि मिखा तिस्ना उई त लुमका मे शब्द शब्द थै त गनन तंक दि यंक दि अथे थम थै त तंक दि दस मतिना जीवले अक्षर जीवको खन थय ख अथे मेनिना खोपी बाउको निले वइको मन नुगा लेतैको शब्द शब्द थै त मालिको थत्न जीवको मतिना त किनिबले अथे सुचित व मनुया हरेक ख चाहे खराब व बालेमा बमलेमा छ्या मुजीमा थजगु व यागु गल्ती तकन सित छो मतिना त किनिबले यहीगु थोड़ा छ संकेत ख मतिना जुगु अथे बारम्बार लफु बस या सुनेगु अथे लिपवया फुक थियो ख लोमङका कल मेसेज यागु नप्लागु सामान्य कथा ये निहाउनेगु तके मतिना प्रेम जीवले थियो न जिस अनुभव या फु अथे थियोगु ख अथे मतिना जीवले जीगु आजि थो ख आख्न कनेगु जे तन मेगु मे पक्ष कना उने तन मेगु मेदु जी खने व छोपला हजुर सभ्य स्वस्थ मसिका विचार दिपी जुज बजा चढ्यो रत्न स्वभाव अर्चनीय र मङ्का छ आइतबार।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
0: इट्स 9 p.m.